रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेलैंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner TRK News Kashmir, Nasha Mukt Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official Radio Partner. Radio Chinar 90.4 FM.

साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar Beats with RJ Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
4: Nasha Mukt Lolab T20 Cricket Cup 2026. Organized by Sports Club Chandigam Lola in collaboration with Swaland Police Administration District Kupwara, under the theme Nasha Mukt Bharat. The Battle of Cricketing Giants. 32 teams from North Kashmir with one goal to lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media partner TRK News Kashmir, Nasha Mukt Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket and cricket. Official radio partner Radio Chinar 90.4 FM.
5: Kashmir sirf ek jagah ka naam nahi hai, ye ek खूबसूरत एहसास है, एक ख्वाब है जो आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। ये एक ऐसी सरजमीन है जहां की हवाएं भी नगमे गाती है, बहते दरिया भी शायरी सुनाते हैं और हर एक मौसम एक नई तस्वीर तख्लीक करता है। ये है कश्मीर, ये है जन्नत बेनजीर। कश्मीर की रूह को समझना हो तो यहाँ की शायरी को महसूस करना होगा। यहाँ की शायरी में इबादत का एहसास है, मोहब्बत का जज्बा है और जिंदगी जीने का सलीका है। यहाँ की आवाज शायरों के कलम से हर पल फजाओं में गूंजती रहती है। यहाँ की शायरी सिर्फ सुनाई नहीं देती है,

महसूस होती है, दिल में उतरती है और एक इंसान को खुद से मिलाती है। अगर शायरी कश्मीर की जान है तो मौसीकी इसकी धड़कन है। कितने ही दिल है जो संतूर की आवाज पे धड़कते हैं, जो रनाब की आवाज सुनते ही झूमने लगते हैं और जो गुलकारों की खूबसूरत आवाज में एक पुरसुकून एहसास महसूस करते हैं। कश्मीर के हर सुर में एक कहानी है, कहानी है बदलते मौसमों की, कहानी है मोहब्बत की, कहानी है आने वाले कल की उम्मीद की। ये है कश्मीर और ये सब एहसास जिंदा है यहाँ की मौसीकी से। कश्मीर का फन और फनकारी सब्र, महारत और बेपना मोहब्बत की अलामत है और ये एक ऐसा एहसास है जो रहती दुनिया तक जिंदा जावेद रहेगा। पश्मीना शालों की बारीकी से लेकर पेपर माशी की नक्शो निगारी तक हर तकलीक एक नई कहानी सुनाती है। मेहनत से तराशी गई लकड़ी और फितरत से मुतासिर मुसव्वरी, ये सिर्फ फनपारे नहीं है बल्कि एक कश्मीर की लाजवाल सकाफत और विरासत की अक्कासी करती है। कश्मीर सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि ये एक जीती जागती तकलीक है। अगर सही मानों में खुद को कश्मीर के रंग में रंगना होगा तो यहाँ की शायरी, मौसीकी और फनपारों को देखिए तो आपको यकीनन महसूस होगा कि कश्मीर सतरंगा

0: इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चना 90.4 FM. जी हां, आप सबका वेलकम टू दिस ब्रिलियंट मॉर्निंग शो. मैं हूं ज़ूस एंड यू आर ट्यून्ड इनटू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर.
1: यो यो हनी सिंगर बोहेमिया.

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम। दोस्तों, रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मैं हूँ जॉक्सिस। और रेडियो चैनल को फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है अपने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स पर। सर्च करें रेडियो चैनल 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन, और फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ याद रखिये कमेंट्स में प्यार देना है जरूरी। डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में, और इस फ्रीक्वेंसी पर मजेदार शो सबसे हिट मेरी जान, धड़काते रहो।

0: Zeus. Kommer der, ja.
1: RJ Zeus on the mic.
2: ये दोस्तों हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल के धड़कन आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सअप रेडियो की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मजेदार शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो का हिस्सा बनने के लिए अपना किस्सा हम तक पहुंचाने के लिए 8840904904 यहाँ पर कॉल है क्यों करे तो व्हाट्सएप या है क्यों करे टेक्स्ट मैसेज तो पानी कथा बात नहीं और डीएम भी कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर और जे ज्यूस जी सर्च करें ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो या आप जॉग ज्यूस सर्च कर सकते हैं डीएम करके आप शो में चढ़ सकते हैं.
3: Single caller gets motivated. Smart mind sharp, no fake, no bluff. Muscular frame and the attitude.
2: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल के धड़कन शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो के डेरो सेगमेंट्स और सेगमेंट्स में से जी हाँ ब्रदर आज का वेदर कैसा होगा आज का वेदर आइए बता दूं आपको ब्रदर. आज का मौसम पार्टली क्लाउडी होने वाला है जो प्रथा चलते आ रही है पिछले कुछ दिनों से लाइक कपल ऑफ फोर नाइट्स एंड राइट नाउ इट्स गोइंग टू बी सेम फॉर टुडे. पार्टली क्लाउडी मतलब जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा छम छम छम छम छम छम बारिशें गिरनी शुरू हो जाएंगी. वैसे आज दिन का टेम्परेचर रहने वाला है मैक्सिमम 22 डिग्री सेल्सियस. अभी की बात करें तो यूवी इंडेक्स मॉडरेट पर है. सुबह भी जोरदार बारिश हो रही थी मतलब ऐसा लग रहा था कतई मैं जो है मैं नाचूं आज छम छम छम देन आई रियलाइज ना टी शर्ट चला गई और ये सबके साथ होता है जैकेट चला गया पछताप करा पच बेतर करा पच बनियान साड़ा शाम वातान वातान ब्लोवरस नालमुत करा या फेरनस थप दिवान अत मन यह ख्याल थवान कि टेम्परेचर शिफ्ट हेकन इंसान बेमार करे थोड़ा सा टेम्परेचर वेरिएशन अगर ए सी मज बिहत नबरकिन तोत ताप थोड़ा रुक थरत नबर नी गो कह टाइम बंद कर गाड़ी मज तीम चीज कर डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले ए सी को ऑफ कर दे ताकि बॉडी धीरे धीरे धीरे जो है वार्म फील करे. ये चुन कह कि शुरा डिग्री ए सी मजल तुल ए सी पत वसो बन तो इंसान गति खुदा रचिन कलस दौद या सेहत हे ना ठीक ग और अगला जो कहर डाया वो पोलन का है तो मास्क वगैरह लगाकर बाहर घूमे नहीं तो अच्छू वाला सीन हो जाएगा.
3: वेदर अपडेट
2: हाँ तो हम बता रहे थे कि यूवी इंडेक्स जो है मॉडरेट पर है. ह्यूमिडिटी 61% 5 किलोमीटर्स पर ओवर है विंड स्पीड विजिबिलिटी 16 किलोमीटर. आज का सनराइज हुआ 5:24 पर आज का सनसेट होगा 7:34 पर. जी हाँ सैयारा नहीं बदला ना ही हम बदले हैं ना ही आपको बदलने देंगे क्योंकि आपने जुड़ना हमारे साथ अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाए. 8899904904 नंबर मैं हूँ जॉक्स उस मेरी जान से रेहट धड़काते रहा.

0: Zeus. कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: रिचार्ज के हर इस फ्रीक्वेंसी पर जो वायरल होता है वो सब पर आ ही जाता है। तभी तो कहते हैं ज्ञानी कि सबने ये बात है मानी कि जानी वायरल है तो वो सब पर आ ही जाएगा। वायरल ऑन व्हाट्सएप पर आइए आपको बताते हैं कि साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा कर दिया कि सब बोल रहे हैं भैया ऐसा कैसे करते साहब। साइंटिस्ट ने हैच किया एक चूजे को, वो भी अंडे से नहीं बल्कि 3D प्रिंटेड अंडे से। और 3D प्रिंटेड अगर आप नहीं जानते तो एक ऐसी मशीन जहां पर प्लास्टिक रबर वगैरह जैसे चीज़ें डाली जाती है और जो उसको गलाकर एक शेप मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकता है। जैसे प्रिंट निकालते हैं कागज़ पर आप, वैसे ही ये मशीन जो है बाकी चीज़ों का प्लास्टिक वगैरह का प्रिंट निकालती है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी भी हैं, कुछ मशीन जो मेटल्स वगैरह का भी प्रिंट दे देती हैं। अब ये जो अंडे का प्रिंट निकला है इट्स एक्चुअली अ टेस्ट फॉर रिवाइविंग द एक्सटिंक्ट जेंट मोआ। सोचिए अगर ये कारगर हो गया तो आपके पास प्लास्टिक का अंडा होगा, 3D प्रिंटेड अंडा, और अंडे का जो फंडा है आप नहीं समझा पाएंगे आने वाली जनरेशन को। क्योंकि पहले ये डिबेट हुआ करती थी कि मुर्गी आई है अंडा, अब तो पहले ये पूछेंगे कि मुर्गी आया है या 3D प्रिंटेड। जी हाँ, आपके क्या विचार है, हमें भी आचार पसरों से हम तक अपनी बात पहुँचाए। 8899-04904 इज द नंबर। जी हाँ, रेडियो चिनार का यही तो फंडा है कि आपको मिले इंफोटेनमेंट का डोज लाइक एवरी रोज। और इस फ्रीक्वेंसी पर जॉक्स के साथ मजेदार शो सबसे रेह तड़का दे रहा।

0: हूँ आरजे सियू।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: हर दिल की धड़कन रेडियो चिटार 90.4 एफएम शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में आज का कोट ऑफ द डे। जी, आज का कोट कहता है, लाइफ इज व्हाट हैपेंस टू अस व्हेन वी आर मेकिंग अदर प्लान्स। हॉर्स फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन, श्रेयक धड़का धड़ा।

0: ¿Cómo no?
1: RJ Zeus on the mic.
2: Yeah, 90.4 FM. Yeah, this is Radio Chennai's highest frequency. But you enjoy the Mazdar Show. What's up? What's up, show going? Radio Chennai 90.4 FM. Har dil ki dhadkan Saima Judy hamare saath likhti hain. Saima sir, aapka show roz enjoy karti hoon, roz message karti hoon. Umeed karte hain aap bure nahi manenge. Nahi mante hum bura. Hum to chahte hain aap log zyada se zyada hamare saath jude. Thank you so much, Saima, humse judne ke liye. Aur Irfan Ahmed hamare saath jude hain. Likhte hain, Irfan sir, pehli baar message kar raha hoon. शो में मजा है, गाने जबरदस्त है. थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए. आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ. रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी का हिस्सा बनने के लिए 9999904 इज द नंबर. 8899904904 नंबर. तो एक कॉल करित व्हाट्सएप या हेक्यू करित टेक्स्ट मैसेज तो पाने का था इस तरह. और आप जुड़ सकते हैं इंस्टा पर भी, ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो मेरी आईडी. डीएम करके शो में शामिल जरूर हो जाए. व्हाट्सअप शो, और व्हाट्सअप शो में आज का टॉपिक, जी हाँ, ईद की आमद आमद है. और वही अगर हम बात करें दियार और फजाज, एंड नाउ पीपल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस ईद. और वही ईद की बात करें तो कुर्बानी वगैरह या रिश्तेदारों की जानना आना, मोहब्बत को बांटना, सब तक पहुंचाना. और वही अगर हम बात करें, दिस ईद इज समथिंग दैट्स ऑल अबाउट केयरिंग फॉर अदर्स एंड शेयरिंग लव टू पीपल. और ईद से रिलेटेड क्या है वाइब्स, आज हम बात करेंगे ईद एंड ईद वाइब्स की. आप भी शो का हिस्सा जरूर बने और हमें बताएं कौन सी तैयारियां कर रहे हैं आप, क्या है आपके लिए इस ईद पर खास, क्या करने वाले हैं. वैसे खास हम खास तो है हमारा एक वीडियो जो कि आने वाला है इस ईद पर. और ईद वीडियो हर साल की तरह रेडियो चुनार के डिजिटल हैंडल्स पर. और अगर आप रेडियो चुनार को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं आप. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन, रेडियो चुनार 90.4 FM. अब ये है कि हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी बात हम तक पहुंचाए. ईद एंड द वाइब्स हमारे आज के व्हाट्सएप शो का टॉपिक. स्टे हक्ड.

कश्मीर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक खूबसूरत एहसास है, एक ख्वाब है जो आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। ये एक ऐसी सरजमीन है जहां की हवाएं भी नगमे गाती है, बहते दरिया भी शायरी सुनाते हैं और हर एक मौसम एक नई तस्वीर तख्लीक करता है। ये है कश्मीर, ये है जन्नत बेनजीर। कश्मीर की रूह को समझना हो तो यहाँ की शायरी को महसूस करना होगा। यहाँ की शायरी में इबादत का एहसास है, मोहब्बत का जज्बा है और जिंदगी जीने का सलीका है। यहाँ की आवाज शायरों के कलम से हर पल फजाओं में गूंजती रहती है। यहाँ की शायरी सिर्फ सुनाई नहीं देती है, महसूस होती है, दिल में उतरती है और एक इंसान को खुद से मिलाती है। अगर शायरी कश्मीर की जान है तो मौसीकी इसकी धड़कन है। कितने ही दिल है जो संतूर की आवाज पे धड़कते हैं, जो रनाब की आवाज सुनते ही झूमने लगते हैं और जो गुलकारों की खूबसूरत आवाज में एक पुरसुकून एहसास महसूस करते हैं। कश्मीर के हर सुर में एक कहानी है, कहानी है बदलते मौसमों की, कहानी है मोहब्बत की, कहानी है आने वाले कल की उम्मीद की। यह है कश्मीर और ये सब एहसास जिंदा है यहाँ की मौसीकी से। कश्मीर का फन और फनकारी सब्र, महारत और बेपना मोहब्बत की अलामत है और ये एक ऐसा एहसास है जो रहती दुनिया तक जिंदा जावेद रहेगा। पश्मीना शालों की बारीकी से लेकर पेपर माशी की नक्शो निगारी तक हर तख्लीक एक नई कहानी सुनाती है। मेहनत से तराशी गई लकड़ी और फितरत से मुतासिर मुसव्वरी, ये सिर्फ फनपारे नहीं है बल्कि एक कश्मीर की लाजवाल सकाफत और विरासत की अक्कासी करती है। कश्मीर सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि ये एक जीती जागती तख्लीक है। अगर सही मानों में खुद को कश्मीर के रंग में रंगना होगा तो यहाँ की शायरी, मौसीकी और फनपारों को देखिए तो आपको यकीनन महसूस होगा कि कश्मीर सतरंगा

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगढ़ लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेलैंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner, TRK News Kashmir, Nasha Mukt, Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket and cricket. Official Radio Partner, Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
1: व्हाट्सएप पे
0: तभी
2: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप
3: ईद यूंगे किंग खान जयो हनी सिंगर

हाय, मेरी फर्स्ट नाइट परसों होगी ना शायद, तो बहुत डर लग रहा है। हे वैष्णो देवी, अगर सब कुछ अच्छे से हो गया ना तो मैं विजय के साथ आपके दर्शन करने आऊँगी।

0: Kommer der, ja.
1: Tech Talks with RJ Sue. Chiamas Darsha WhatsApp or WhatsApp Show ka segment Tech Talks. Tech Talks ek aisa segment jahan par hum tech ki news aap tak pahunchate hain. Ji haan, tech ki dost hai Radio Channel 90.4 FM. Main hoon Jugsies. आइए बात करते हैं आपको जापान के बारे में बताते हैं। जापान फर्स्ट नेशन बन चुका है जिसने इलेक्ट्रिसिटी जो है स्पेस तक छोड़ी और उस बीम को वापस अर्थ तक पहुंचाया। वही साउथ कोरियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया है एक ऐसा स्प्रे जिसे सीवियर ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये स्प्रे जो है इस तरह से डिफरेंट है कि कुछ ही सेकेंड्स में सीवियर ब्लीडिंग को भी रोक देता है ये। इमेजिन ये कितना कारगर हो सकता है क्योंकि अक्सर बेशतर हम देखते हैं एक्सीडेंट्स में या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी अनहोनी जहाँ पर ब्लीडिंग की वजह से इंसान की मौत हो जाती है, तो ऐसे जो इन्वेंशंस हैं दे कैन बी अ लाइफ सेविंग लाइफ चेंजिंग गैजेट्स फॉर ह्यूमंस। और वही एक दुखद खबर क्योंकि गोल्डमैन सैक्स का रिसर्च और कहा जाता है कि एआई जो है हर महीने तकरीबन 16,000 जॉब्स एलिमिनेट कर रहा है, उन्हें खा रहा है। और ऐसी जो एलिमिनेशन है जॉब्स की एआई की तरफ से वो कहीं ना कहीं इंसानों को डिप्रेशन की तरफ धकेल रही है। हॉट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार, मैं हूं जॉक्स सिरेट, मेरी जान धड़का तेरा।

जी हाँ दोस्तों, इसी ट्रैक के साथ आज के लिए इजाज़त, और अगली मुलाकात कल होगी। आपसे मिलने आएंगे 9:30 से 12 बजे तक लेकर मजेदार शो वसा। एंड मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आपसे जुड़ने वाली है आरजे दीवा। शो का नाम रहेगा चुनार बीट्स। जी हाँ, बीट्स और बीट आप करेंगे एंजॉय ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM। सो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर आइए, सर्च कीजिए ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। फॉलो का बटन जरूर दबाएं और साथ ही रेडियो चुनार के ऑफिशियल हैंडल्स को भी फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सो विशिंग यू ऑल अ ग्रेट डे अहेड, दिस इज जॉग्स साइनिंग अप फॉर टुडे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, खुशबाश, मा सलामा।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

दुनिया दावत तो है फिलहाल आपको मेरे शो के लिए, आप हाजिर हो जाइए। 90.4 रेडियो चुनार पर आगाज हो चुका है शो चुनार बीट्स का विद फुल ऑन वाइब एंड ट्राई बीट्स ऑन रिपीट। और ईद है भैया, दावत है तो बस जी होने वाली।

It's R&B. बीट्स ऑन रिपीट शो चुनार बीट्स अब एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑफ रेडियो चुनार 90.4 एफएम. ढेर सारी बातें हो रही हैं आज. स्पेशली बात होगी कि ईद पे क्या क्या प्रिपरेशंस हैं भैया जी, क्योंकि देखिए ये कुर्बानी की ईद है और इसमें जो देखा जाए तो सब लोग एक्साइटेड होते हैं कि भैया जी जितनी चाहो उतनी मर्जी. अच्छे नाट बता कैसा सुन क्वेश्चन. और यही तो है कि काफ़ी एक्साइटमेंट भी होती है और वो प्यार भाईचारा आपसी में एक दूसरे के साथ वो जो हम टाइम स्पेंड करते हैं ना वो इस ईद पे देखने को मिलता है, ईदुलफितर पे देखने को मिलता है और बहुत ही कम हम देखते हैं कि हम एक दूसरे से मिल पाते हैं. जी हाँ, अपनी छुट्टियों का डेट भी हमने यही रखा होता है कि ईद पर शिकार गत सुनते ईद पर गत्सो स्पेंड करो टाइम फैमिली से. एंड आई फील दिस इज़ द बेस्ट एवर फीलिंग व्हेन यू आर प्लानिंग योर वेकेशन एंड स्पेशली ईद भी आए तो मज़ा आ जाए. सो मुझे बताइए कि कितनी एक्साइटमेंट है, क्या प्रिपरेशंस चल रही है, क्या चीज़ दो लागून कम चीज़ शिकार हैं, बैंगल्स मैचिंग है, कुर्ता आपने सिलवाया है और कुर्बानी जानवर जो हमारे पास होते हैं उनसे कितना लगाव होता है हमने इस पीरियड में जिस पीरियड में वो हमारे साथ होते हैं. हर चीज़ से बात हो रही है, आबिशो कैसे बन सकते हैं ईद प्रिपरेशन के बारे में बात हो रही है. आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

कश्मीर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक खूबसूरत एहसास है, एक ख्वाब है जो आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। ये एक ऐसी सरजमीन है जहां की हवाएं भी नगमे गाती है, बहते दरिया भी शायरी सुनाते हैं और हर एक मौसम एक नई तस्वीर तख्लीक करता है। ये है कश्मीर, ये है जन्नत बेनजीर। कश्मीर की रूह को समझना हो तो यहाँ की शायरी को महसूस करना होगा। यहाँ की शायरी में इबादत का एहसास है, मोहब्बत का जज्बा है और जिंदगी जीने का सलीका है। यहाँ की आवाज शायरों के कलम से हर पल फजाओं में गूंजती रहती है। यहाँ की शायरी सिर्फ सुनाई नहीं देती है, महसूस होती है, दिल में उतरती है और एक इंसान को खुद से मिलाती है। अगर शायरी कश्मीर की जान है तो मौसीकी इसकी धड़कन है। कितने ही दिल है जो संतूर की आवाज पे धड़कते हैं, जो रनाब की आवाज सुनते ही झूमने लगते हैं और जो गुलकारों की खूबसूरत आवाज में एक पुरसुकून एहसास महसूस करते हैं। कश्मीर के हर सुर में एक कहानी है, कहानी है बदलते मौसमों की, कहानी है मोहब्बत की, कहानी है आने वाले कल की उम्मीद की। ये है कश्मीर और ये सब एहसास जिंदा है यहाँ की मौसीकी से। कश्मीर का फन और फनकारी सब्र, महारत और बेपना मोहब्बत की अलामत है और ये एक ऐसा एहसास है जो रहती दुनिया तक जिंदा व जावेद रहेगा। पश्मीना शालों की बारीकी से लेकर पेपर माशी की नक्शो निगारी तक हर तख्लीक एक नई कहानी सुनाती है। मेहनत से तराशी गई लगदी और फितरत से मुतासिर मुसव्वरी, ये सिर्फ फनपारे नहीं है बल्कि ये कश्मीर की लाजवाल सकाफत और विरासत की अक्कासी करती है। कश्मीर सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि ये एक जीती जागती तख्लीक है। अगर सही मानों में खुद को कश्मीर के रंग में रंगना होगा तो यहाँ की शायरी, मौसीकी और फनपारों को देखिए तो आपको यकीनन महसूस होगा कि कश्मीर सतरंगा

उसे किथे भी जावे पर रेडियो चनार को ना कदे भी भूल जावे। 91.4 रेडियो चनार पर आगाज। तो हमने 12 बजे ही किया है, बट अभी बात हो रही है सारी चीज़ों के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट ईद प्रिपरेशंस एंड ऑल्सो हम आपकी सेफ्टी का भी ख्याल रखते हैं। एंड राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और नेशनल हाईवे पे आपको बता दें कि बोथ साइड से ट्रैफिक को एलो किया जा रहा है। आप

आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं. बस बी केयरफुल, बी कॉशियस. हमारे पास जो गाइडलाइंस है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, हमें उन्हें फॉलो करना है. गाड़ी को चलाना है, उड़ाना नहीं है. कूल बनने के चक्कर में फूल ना बने, और रियल लाइफ में हीरो बनना है तो जीरो वाले काम नहीं, हीरो वाले ही काम करें. फिलहाल आप कहीं जा रहे हैं सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाए, एसओपीज का ड्राइविंग जो हमारे पास ट्रैफिक एसओपीज है उनका ख्याल करें, उनको मद्देनजर रखते ही आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचे और अपना और अपनों का ख्याल रखें. एंड टेल मी व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस जैम और ट्रैफिक जैम, क्योंकि अभी देखिए कि प्रिपरेशंस ऐसी है कि चहल पहल है पूरे मार्केट में. बट स्टिल आपको फेवरेट पार्ट क्या है ईद का मुझे बताइए. शो कैसा बन जाए 8 9 0 4 9 0 4 टेक्स व्हाट्सएप कीजिए. शो जनार बीच कैसा बन जाए.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

ब्रांड्स है, जो बड़े बड़े ऐसे ब्रांड्स है, वो शेपिंग, दे आर शेपिंग फैशन, पॉलिटिक्स इन द ग्लोबल इकोनॉमी. सो इट्स नॉट ओनली कि हम फील का ही बोले, वहाँ पर एक इम्पैक्ट पड़ता है. सो इट्स, दे आर इम्पैक्टिंग ओवरऑल सोसाइटी. हम कैसे खाते पीते हैं, कहीं ना कहीं वो भी आज का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कि हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सनस है वो क्या खाना खाते, वो कैसी लाइफ जीते हैं, कौन सा ब्रांड पहनते. सो दे आर, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो हमें किसी हद तक इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और हम भी उन्हीं की तरह जीना चाहते हैं. सो क्यों है हमारे जो एथलीट्स ग्लोबल आइकन्स, और कैसे उन्हें हम देखते हैं, कैसे सोसाइटी उन्हें देखती है, और क्यों इतना उन्हें माना जाता है? आफ्टर गेम्स कहीं ना कहीं पीपल स्टार्टेड, ऑब्वियसली दे आर लाइकिंग देम, बट स्टिल दे वॉन्ट टू बी लाइक देम एंड दे वॉन्ट टू लिव लाइक देम. सो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, कैसे हमारा माइंड कहीं ना कहीं चीज़ों की ओर डाइवर्ट होता है, और कैसे वो ठीक ठाक पैसा इस चीज़ से कमाते हैं, और हमारा भी कहीं ना कहीं एक लाइफ पे खासा इम्पैक्ट डालते हैं. So we are talking about athletes as icons. आपकी क्या है राय, आप किस एथलीट को फॉलो करते हैं, और आपको क्या लगता है कि किन की लाइफ ज़्यादा ओवररेटेड है और किन की लाइफ अंडररेटेड है? बता सकते हैं, शो कैसा बन सकते हैं, आप 8999904904 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, या ईद के बारे में अपनी प्रिपरेशंस के बारे में कुछ कह सकते हैं. आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चैनल 91.4 FM.

ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा।

लेकिन ये बात तो बहुत ही सही है कि चैन तो नहीं आता है, ऐसा लगता है कि कुछ दूर जा रहा है मुझसे। अब क्या कर सकते हैं, मुझे तो दूर जाना पड़ेगा फिलहाल के लिए। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो असरा कैसे आ पाएगी। शो चुनाव और बीट्स म्यूजिक ऑन डिमांड का वक्त खत्म हो चुका है और अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ और आपसे जुड़ने वाली है असराली का शो हंगामा विद फुल ऑन ड्राइम और फुल ऑन ड्रामा, फुल ऑन टाइम, फुल ऑन मस्ती, सब कुछ मिलेगा आपको शो हंगामा पर। मैं तो जा रही हूँ, आप अपने ख्याल रखिए और कल मुलाकात होगी 12 बजे। इन्जॉय कीजिए अपने ईद शॉपिंग को, अपने उस वाइब को जो ईद के लिए आपने रखी है और बरकरार रखिए। इन्जॉय कीजिए, मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, शो के बाद जुड़ना चाहते हैं, मैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर आपको मिलूंगी। और आपको आरजे तीवा सर्च करना है, आप मेरे साथ कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपकी कॉन्वर्सेशन के लिए असरा हाजिर है, बात कीजिए, शो का हिस्सा बन जाए। आप सुन रहे हैं हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ये तो दिल्ली से मनाली चले, पर हम तो चिनार बीच से हंगामा की तरफ जा रहे हैं। हंगामा जहाँ ड्रामा एंटरटेनमेंट क्या चल रहा है, व्हाट इज बजिंग और लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच मिलता है जो कहीं और नहीं होता। शो शुरू हो चुका है हंगामा, 2 से 4 बराबर रेडियो चुनार पे हम हंगामा करते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं, अपडेट्स से लेकर क्या ट्रेंडिंग रील्स मीम्स हैं, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, और उसके अलावा एक स्पेसिफिक टॉपिक जो हर दिन नया हर दिन खास होता है, और एक और बात होती है कि आते आते ही प्ले होता है कुछ क्रेजी कुछ खास।
1: दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने।
0: अरे हमें यूपी बिहार का क्या करना, अपना दिल ही दे दीजिए। 8899904904 इज नंबर, यू कैन कॉल मैसेज टेक्स्ट व्हाट्सएप पर अपनी बातें अपनी एक्सपीरियंसेस, कैसा रहा आपका संडे, व्हाट डिड यू डू ऑन योर fun day। 8899904904 is the number, I repeat, you can call message text whatsapp, main wasra show hangama main bas yun kayo yu wapas aaye।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

It's Vedarche Diva on your radio channel 90.4 FM.

हाय, मैं हूँ आस्टर और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और अभी हम बात करने जा रहे हैं रेलवे अपडेट के बारे में, और आज की अपडेट यही है कि एवरी ट्रेन इज शेड्यूल्ड एज पर द समर टाइम टेबल। एंड अगर आप जानना चाहते हैं द इनसाइडर्स व्हाट इज गोइंग ऑन ट्रेन्स बिटवीन स्टेशंस या लाइव लोकेशन ट्रेन्स की, सो यू कैन डाउनलोड, चाहे वो iOS है या एंड्रॉयड डिवाइस है, यू कैन डाउनलोड रेल वन ऐप फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। एंड मोर ओवर, बहुत सारे लोग अभी ईद की तैयारियों में हैं एंड दे आर गोइंग होम हॉस्टल से, कॉलेजेस से, स्कूल से या अपने पीजी से, बट इस बात का ख्याल रखिए कि अपनी फैमिली के लिए कुछ लेकर जाइए सो दैट दे विल बी हैप्पी समहाउ। एंड मोर ओवर, मुझे लगता है कि फैमिली सबसे ज़्यादा खुश ऐसे त्यौहार पे अपने जो बच्चे होते हैं या जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जब वो दूर से आते हैं, बाहर से भी बहुत सारे बच्चे ईद के मौके पे घर आते हैं, दैट्स द बेस्ट फीलिंग फॉर एवरीबडी अराउंड, इवन फॉर द पर्सन जो ट्रेवल कर रहा है एंड फॉर द पीपल हु आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन। बिल्कुल, एक ऐसा प्यार जो इंसान कभी भूलता नहीं है, चाहे वो हम कोई बच्चा बाहर पढ़ाई कर रहा है, कोई इंसान बाहर जॉब कर रहा है, घर से दूर है, बट ईद एक ऐसा मौका है कि सब एकजुट होकर कुछ दिन साथ में सेलिब्रेट करते हैं। और अब देखिए, अगर ऐसा है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, ध्यान से ट्रैवल कीजिए, 10-15 मिनट पहले अपने रिस्पेक्टिव स्टेशन पर पहुँच जाइए और सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

Welcome back to Show Hangama, only on Radio Sonar. देखिए जान तो हमारी भी यहाँ पे बसती है और देखिए अभी हर दिन एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है जिसकी वजह से आप अपनी बातें आपकी कौन जान है वो हमसे शेयर करते हैं और आज का टॉपिक कुछ खास है बिकॉज इट्स अबाउट इंडिया इट्स अबाउट द सुपर हीरोज वी हैव इन आवर कंट्री और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भरपूर है क्योंकि रेडियो चुनार एड फ्री म्यूजिक का वादा सबसे ज्यादा देता है बस मैं हूं अस्रा सुन रही है रेडियो चुनार 90.4 FM क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम. ये है दिल की धड़कन. और देखिए, जैसे कि आज हम सुपर हीरोज ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी ऐसी सुपर हीरोज माइथोलॉजिकल क्रिएटर्स हैं या मार्शल आर्टिस्ट हैं या कौन सी ऐसी मूवीज भी हैं, मूवीज से लेकर कौन से ऐसे कार्टून से लेकर सीरीज से लेकर सीरियल तक, डेली सोप तक लेकर

हर कहीं पे इंडिया में कैसे सुपर हीरोज हैं, हमें मिलते तो हैं, और देखिए रियल लाइफ सुपर हीरोज कैसे होते वो तो अलग बात है, बट हम सिनेमैटिक सुपर हीरोज की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जब भी सुपर हीरो की बात आती है, कॉमिक आइकन्स जो रहे हैं इंडिया के, दैट इज शक्तिमान एंड लाइक आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा किड होगा, कोई ऐसा बच्चा होगा, इवन द जेंजी दे नो अबाउट शक्तिमान, इवन दो हमने ये जो कार्टून है, ये जो एक्चुअली एपिसोड्स आते थे इस चीज़ के, तो हमने वो देखे नहीं है, बट हमें मालूम है कि हु यूज़ टू प्ले शक्तिमान एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक टेलीविजन सुपर हीरो फॉर इंडिया। इसके अलावा बात करें तो नागराज जो एक्चुअली राज कॉमिक्स से लाइक इंस्पायर्ड है और वहीं इसी राज कॉमिक्स जो है वहीं पे रिटन एक नागराज सुपर हीरो है। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि कैसे नागराज एक शिफ्टर था और लाइक बहुत ज़्यादा उस टाइम पे वो इच्छाधारी नाग वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, और कहीं ना कहीं इच्छाधारी नाग हमेशा विलेनस साइड पे हुआ करते थे, पर दिस कॉमिक शोड इट अदरवाइज। आई एम प्रेटी श्योर कि आपके पास भी कोई ऐसी कहानी होगी जहाँ पे कोई सुपर हीरो, कोई ऐसा कैरेक्टर जो एक्चुअली क्रिएटिविटी के साथ साथ और लोगों को बचाता है, सबको बचाता है, और कौन सी ऐसी मूवीज भी हैं जहाँ पे एक्चुअली ये सुपर हीरो वाला कॉन्सेप्ट सामने आया था, उनके बारे में बात होगी, पर आप भी अपनी यादें शेयर कीजिए। मैं वासरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM।

ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली हमें मालूम नहीं है, और इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उनके पीछे, बट अभी के लिए नहीं बताऊंगी सब कुछ. अभी तो बस रिमाइंडर है कि यू कैन बी द पार्ट ऑफ द शो. 8899-04-904 इज द नंबर. यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप.

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम. जैसा कि आज हम सुपर हीरोज ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं और हमने शक्तिमान नागराज की बात की, पर बहुत सारे

और देखिए जो ट्रैक अभी मैंने प्ले किया है ओ वुमन, या इट्स क्या, इसकी भी एक कहानी है. देखिए आई बिलीव, और मेरे बिलीव करने से क्या होता है, बल्कि ये सच है कि हर किसी आर्ट पीस, चाहे मूवी है, चाहे सॉन्ग है, चाहे कोई आर्टिस्ट है, उनकी एक अपनी कहानी होती है. और इस गाने की ये कहानी है कि जब जो इनके जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स थे, जो कंपोजर्स थे, लिरिसिस्ट थे, उन सब ने साथ मिलकर डिसाइड किया था कि इस गाने के लिए, पर्टिकुलरली इस गाने के लिए जो गैंग्स ऑफ वसीपुर से ये गाना है, तो इस गाने के लिए स्पेसिफिकली एक लोकल लेडी को लाया गया था जो एक्चुअली शादियों में जाकर गाती थी. और वहाँ से कैसे उनकी जर्नी शुरू हुई और बहुत खूबसूरती से इस गाने को गाया गया, और अभी भी हम सब एंजॉय करते हैं.

मैं मोस्टा शो है हंगामा, बैक टू बैक ट्रैक्स का वादा सबसे ज्यादा यही है, क्योंकि आप विचार भी शेयर करते हैं और इन्फॉर्मेशन एंटरटेनमेंट साथ मिलकर हो तो क्या भी बात है। मैं मोस्टा सुंदर रेडियो सुनार 90.4 FM, ये है हर दिल की धड़कन।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू द हॉरर फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और जैसा कि हम हंगामा पे आज सुपर हीरोज के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली स्पाइडरमैन, आयरन मैन, बाहर वाले नहीं, अपने देसी यानी कि सुपर हीरोज ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। शक्तिमान की बात हो गई, नागराज की बात हो गई, पर इसके अलावा और भी दो आइकॉनिक कॉमिक बुक सुपर हीरोज है। सबसे पहले सुपर कमांडो ध्रुआ, जो एक्चुअली अपने एरोबैट्स और डिटेक्टिव स्किल्स के लिए माने जाते थे, मार्शल आर्ट्स या जो भी, और उनके पास एक स्पेशल पावर थी, इस कैरेक्टर के पास एक स्पेशल पावर है कि ये एनिमल्स से कम्युनिकेट कर सकता है। और इसके अलावा एक और बहुत ही फेमस नाम, जो कि इवन बींग जयंती आई हैव हर्ड अबाउट इट, दैट इज चाचा चौधरी। चाचा चौधरी इज वन ऑफ द लेजेंडरी इंडियन कॉमिक कैरेक्टर, जो एक्चुअली अपने शातिर और तेज दिमाग से काम लेता है, और उनका एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव साइड कैरेक्टर भी है साबू। और चाचा चौधरी इज ऑल्सो नोन फॉर थिंकिंग फास्टर देन कंप्यूटर, एंड दैट्स समथिंग अमेजिंग। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं तब छोटी बच्ची होती जब चाचा चौधरी फीचर होता था, आई वुड बी सो क्रेजी अबाउट इट। चाचा 420 नहीं बल्कि चाचा चौधरी की बात हो रही थी। और आप भी बताइए कि आपको, आपके पास कौन सा ऐसा सुपर हीरो है जो एक्चुअली इंडियन सुपर हीरो, कॉमिक हो या मूवीज हो, यू कैन शेयर इट 8899-4904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। मैं हूं असरा, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़।

0: मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर

0: जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

ये भीगने का मौसम शुरू हो गया और ऑनेस्टली बोलो तो समझ नहीं आ रहा कि किस तरह का मौसम है ये, कितना अनप्रेडिक्टेबल ऐसा लग रहा है, मौसम के मूड स्विंग्स हो रहे हैं। अभी धूप थी, अभी बारिशें शुरू हो गई एंड मेक श्योर कि आप अपना ख्याल रख रहे हैं एंड स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट जो पोलन सभी कश्मीर में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहे हैं एंड दैट इज़ हर साल का रिचुअल, क्योंकि जो ह्यूमन रूसी फ्रेस्ट बना उनकी वजह से जो वो सुबहम छोसा वो ज़ुकाम, फीवर, खांसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वायरल इन्फेक्शन हो जाता है जिसे हम हे फीवर के नाम से जानते हैं। सो बेटर है कि आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि जितनी देर ये हवाएं उससे ज्यादा प्रोपोगेट होता है ये पोलन। सो मेक श्योर कि आप इस मौसम में एंड स्पेशली मॉर्निंग और इवनिंग में अपना ख्याल रखें एंड मास्क का और अच्छी क्लोथिंग का, जो वार्म क्लोथिंग हो कहीं ना कहीं, क्योंकि उससे भी सर्दी एक्सपोजर का खतरा है, क्योंकि मौसम काफी चेंज हो रहा है अनप्रेडिक्टेबली। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सुनार 90.4 FM, ये है हर दिल की धड़कन।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम. ये है हर दिल की धड़कन. और देखिए, जैसे 4 बजने वाले हैं और आपका और मेरा सफ़र यहीं तक था, और जाते जाते बस यही बोलूँगी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड मोर ओवर अपनी लाइफ में कुछ क्रेजी करते रहिए और मेमोरीज बनाते रहिए. आज के लिए इतना ही. दिस वॉज ऑल अबाउट मी, दिस वॉज ऑल अबाउट शो हंगामा, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. ओवर.

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेलैंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner TRK News Kashmir, Nasha Mukt Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official Radio Partner Radio Chinar 90.4 FM.

beats with Archidiva, only on Radio Channel 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ। है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: तुझे याद है ना आज पापा तुझसे बात करने वाले हैं?
2: उन्हीं से मिलने की तैयारी कर रहा हूँ।
1: सलून में?
2: लड़कों की खूबसूरती सलूनों में नहीं, बैंकों में निखरती है। अगर आज लोन पास हो गया ना, घर और घरवाली एक साथ फिक्स हो जाएंगे।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

अब मैं जो कहने जा रहा हूँ ना किसी ने कहा है ना किसी ने सुना है, मुलायजा फरमाइए हुजूर।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए।

0: सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: FM। दिल को
0: करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: राहुल,

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर, मगर, मगर

इधर चैन आराम राति सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं देखो ना दर्द हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात लेकिन एक बात

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।
1: सा

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे खतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: बचाऊंगी शोर बचाओ ओ मुर्गे ओ मुर्गे ओ कौवे पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के चोर मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय मुझको बना दे बावरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: ये साहब माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुक्तम में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना तारा रा रा रा। जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। हे याने याने याने प्यार हो गए।

मैंने खींचा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: ना यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी
1: शाम। बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।